तो क्या कर दिया ने गरिया जानो इतु के म केती उने उता तो आई तो या नहीं ने अने जे बारे की दियो हेलो हरु ये मैं गा गई ओया ता ना तीयु ए मुइंग तीउन समथिंग सो तीउन समथिंग स्मॉल से ने तो आई तो आई ले बस गया तुम गुरगे लेने की बात को मजी को ले को गए गाथा रे जेबियो सो को को नहीं गले गया को जित जान जब आई ये अलग इंजो ने बोया तिने गंडे से ले मन अंजो को तुआई तुआई को मगी आती को आती इबरे इतना इंजो को गंडे मत बारी आदरी इबारे सुगारु इबारे उनका हाँ कुल्ला ये लोनो गंडे से ले मत बारी आती ओनो ये को सुगले जेबियो सो गिरो को तो मई तुआई तुआई से ले लेनो यागुन दिरी सी अगेर करो कथानम ये गरों का वैसा संबिली देखो शेगला आगो कमा कवाई डा संबिली को साइड नोट रबो कालो इनेट गुदोमा अमें चागो ने कालो इनेट चंग जोने चंग तबूत अगे चंग लामें न बराबा अमें चागो ने मगस क्यों सही सनी के पुले पुले अगे तेरे ताई एन का सारा गया थमा ने तेरे वाले बाबा आया के बेंडी कालो इनेट अगो कालो इनेट नोटन ने गितो ने एन बेतु ताब्राइन गोने कि मबा यान गोले Kigeito cheibo aran koyam bororiet agoret. Yeah? Eh, mati agi agus kong. Angka sa folio muskiev zuri. Kima bo yon gulim. Kigeito cheibo aran koyam bororiet agoret. Yeah? Toz ingen gole noni. Ingen ole kiba isha ito. Agoi. Yonko kiba isha, yonko kiba isin. Koko gile ne. Sawa sawa? कि मबायन गोले कि गई तो चेबारन कोयम बुरुरियत अगोरेत महाराज लोरे तो इनो कई ना मिला ना अगर बुकुआ इन्दे ये लोरे ना था कोलागा बुकाब कौन कि मबाले जिन गोले कि गई तो चेबारन कोयम बुरुरियत अगोरेत कि भाई शैतानो तिन्हे गागु ये ने तुस इंगने तन को तुम अगेन जो रुतिंडा बस Teben ji ni mi olon olon olon anai jabage sago ni magisi shego domengen kokwa teskore e ame sager tu ga gere tu jangwa ga bisa jo bijo amongen agere tu jangwa bisa ati nyambare ne ame so odomengen ni ye jab tu ga landugul so ame tike bege nyoru ntindo ago yongi testa ntindo ame che testa nyoru gelji ne no limbondo nyo Bidin ang unga tkali magi noktay entu ga nambo sofa set. Agira alisye big. Ago juru. Ago yonto magetar sofa set. Chemyori ti. Umache ke ngapal ge bono. Nunga toke kwa kwa yun yutu. Labe di nye. Lenyo rubik 45,000. Lenyo rubik elipu ushik sisi. So namsi mo yungunga gichil star. 406 hash. To get number 4. Ke namis. Ichile gitu star 406. Star 406 hash. Kuma yao tunu bak tu goshek tukul. Mati ger chonu go tukul. Ger number 4 ne again. Yeah? Amma jay na menu of 45,000. An ital bonus jibayli bushek sisi. Dhagir jita nubo 117 mwisho. Kanam bonus jijigat jibayli bushek sisi. 548. Mesa, hey, mesa yin alay agi. 548. Dhagir ka na menu on ganam 45,000 jibas of aset. Nga agen ni chutu yato nungun yara karaka. 250 mwisho. Dhagir ka na magine 45,000. Imagine now, Garland 26 shillings. Then now, you don't know, 685. Or Garland 29 shillings. Or the young 45,000. Namsi moingung en nguni. Pole pole. Moiminji, white and gay. Watch again en ngung at the nyagan. Sawa sawa. Ichile get your star. 406 hash. Agi we to get number 4. Mati ger janu, mati go mirimiri go nyag. Mami igi ulan. Ger get your number 4. Number so facet. 45,000. And I go bonus. Nebo elibu shek sisi. Che tili lenga bisa che ganyin. So ama che genyo run tienda agen gen olbo studio. Olon desi tai. Tienda nebo subembe. Kale yang gesur ya kuandangu. Ya me tinye ge. Ya iswana. Ama che gas tiende gom nye. Kale yang gesur ya kuandangu. Ya me tinye ge. So go tingi nile. Oma che so sur ya kuandang. Cheng tuku. Alo tiyane tinye tuku kwendi man. Anak, kagilah sih gay buri pot kele lego kini orang bahamuru lego hotelial itu. Kagini orang bahamuru katu anonya berita agen apa jinit? Ii cuma kan itu anda tuh time. Kalau ni asupembe, yang gesur ya kuandangu.